भर गई। माम ची गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिखे मामन अगर दुखा दर समाया।